सजसई सृष्टि का पहिले मई थिए भगत कोई थिए नन्नरु जो देख अहिले सबै बुझ तिमी मेरै विभूतिहरु सृष्टि का पछि फेर महापरलायमा मै ग्रहन्छु भगत मुदी।

सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: बीमा को लाभ दिए आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों
1: यो रेडियो सैलुंग को समय सूचक हो।
2: यति बेला साँझको 5 बजेको छ।

0: प्लीज मेरो जगदम्बा सिमेन्ट।
1: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
2: अब बाँकी प्रसङ्ग।

नमस्कार रेडियो सैलन सामुदायिक एफएम 92.7 MHz बाट म बद्र प्रसाद सापकोट आज विक्रम सम्वत 2083 सा शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष सन् 2026 जुन 17 तारिख आषाढ 3 गते बुधबार तृतीय तिथि अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरी आओ साक्षेण कल्पय भरी।